ते जन कब हूं नहारे ते जन कब हूं नहारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा ते जन कब हूं

शिवा पर मोहे है शब तर मनते कब हूं न करो शिवा पर मोहे है शब तर मनते कब हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो अरसे खाने की मन गोए लाल जहांगो का उतरे अरसे खाओ अपने ही मन को ए लाल जहां

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इनी हो दियो, आज भले इनी हो दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, आज आग टे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

0: तुमरे ध्यान को।
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंद साफ फरमाते
0: जे जे तुमरे ध्यान नित उठ ध्याए है संत जे जे तुमरे ध्यान नित उठ ध्याए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: नित जपिए सांस।

0: तेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरने की चुगी उच पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीलनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीलनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तो हन जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलता ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे ते उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम हुआर कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

महाराज एक अजे भी पानी मैला है। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे फिर पीरनी दे चरण धोके पा दे वाखो श्री वाहिगुरु। महाराज पीरनी असी तैनू मथे नहीं लांदे, पहला पहला आउंदी सी इत्थे साडी चुगियां दे आसे पासे बहुत प्रभारी कर देंदी सी, हुण ओह वी इहदा बंद कर दिता है। करूप है इहदे वल वेखिया साडे मन च किरना आ जांदी पीरनी इह तां नीच है चंडाल नहीं, असी तैनू मथे नहीं लांदे। भगवान रामचंद्र जी कहन लगे भी तुहाडी मर्जी है, भावे नीच है कुछ है बचन बन के वेख लो। आखिरकार प्यारी साध संगत साखी बड़ी लंबेरी है, पीलनी दे चरण धोते किसने धोते रिखी? भगवान जी कहन लगे जे तुहानू धोने आ नफरत आउंदी असी आप धो देने, हर दासन से प्रीत है। ए ना समझे करो भी महापुरुषा ना असी प्यार करने हैं, असि इस वास्ते करने हैं कि महापुरुषा नाल गुरु नानक प्यार करदा है। आखो श्री वाहिगुरु, हर दासन से प्रीत है, हर दासन से मित्र, हर दासन के वस है जो जंती के वस जंत है, जंती के वस। भगवान रामचंद्र जी ने पीलनी में आप चरण धोते, महाराज मैं गरीबनी हां ना पीलनी तेरे अंदर सच है तेरे अंदर प्यार है। भगवान रामचंद्र जी ने पीरनी दे चरण धोके जिस वेले उस सरोवर दे अंदर पाए सारा पानी अमृत बन गया। आखो श्री वाहे जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन के लो भाई कर्म कांड यो उची कुला वाले हो, तुहाडे मंत्रा ने कुछ नहीं कीता, असी भी चरण धोके पाए हैं पर मेरे भगत दे चरणा च इतनी सती है। पीलनी तू तन रो पी महाराज थोड़ी कृपा, थोड़ी कृपा तुसी कृपा कीती है, जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत चौकुंटी। ये प्यार दिखे प्यार दी अवस्था है। तो आओ प्यारी सास संगत कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के, साधु दे चरण भाई चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा बड़ पागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। महापुरुषा दी प्रेरणा अनुसार गुरमुख प्यारे गुरु दरों वरसाए हुए सरदार जगजीत सिंह जी, उन्होंने वड्डे प्राता जी सरदार तारा सिंह जी होर उन्होंने वीर सारा गुरमुख परिवार गुरु ने बख्शिश की है भाई, संत सेवी परिवार है, संत की सेवा ते संत की संगत नाल मिले की है ये तुसी तक लो सबो कुछ मिले। हुण इत्थे किसी चीज की कमी है, कोठियां भी दित्तियां, कारोबार भी दिता है, ते नाले गुरु नानक ने अपना प्यार भी दिता है। किथे प्यार आ गया सुहागण का हार श्रृंगार सफल हो जाता है जे पति की प्रसन्नता है, ते जे पति नहीं रीजिया है तां कितने कर लवे उन्हूं सुहागण कोई नहीं कहेगा दुहागण कहणगे। दुहागण क्या निशानी है किसी ने सवाल किया है महाराज दुहागण की निशानी की है? हजूर कहते हैं खसमो कुठी फिरे निमाणी अपने कंत नूं नहीं रिझाया, अपने साईं दी प्रसन्नता नहीं ली। फिर चाहे वह सुचे बस्तर पाती है चाहे रेशमी पाती है चाहे कुछ पाती है, हजूर कहते मैले वे सतना कामणी, उन्होंने मेले वे लोग उंगलां करते हैं पति नाल बननी आई ते कपड़े पाई फिर मेले वेस्ते ना कामणी दुखी रहन विहाए। तो प्यारी सात संगत कितनी बख्शिश है कितनी मेहर है जिथे सब कुछ गुरु नानक ने बख्शिया, केडा सोहना कीर्तन। सरदार रजिंदर सिंह जी तबला बजा रहे सन बड़ा सोहना अच्छा बजा रहे सन, गुरु मेहर करे चढ़दियां कलां सतगुरु जीवन बख्शे केड़ी वड्डी गल है, सवेर का भुला या शाम घर आ जाए भुला कोई नहीं कहता गुरु बख्श। तो प्यारी साध संगत मेरा तो गुरु दी है ना, बख्शिश तो गुरु दी लैनी है भाई, इतने भी तेगी गुरु दे हुक्म ही सबो कुछ प्राप्त होता है, सोहना कीर्तन हो जाए। तो प्यारी साध संगत ये महापुरुषा ने कृपा है। तुलसी जी ने लिखा है गुसाई तुलसी दास जी ने सुतदारा अर लक्ष्मी पापी के भी हो,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਧਾਰਾ ਅਰ ਲਛਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰੀ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਅਣਗ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੇਂਦਰ ਆਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਨ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਤੋ ਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਦਿਓ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਕੜਛੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਵਰਤਾਂਦੀ ਰਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਛਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਛੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਛਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਕਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਡਵਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣੀਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਗੁਣਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगिस करते जोगा, लाख पोगिस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाधिया, तेरा अंत न पारा बाधिया।

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगशी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं, गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धन ताम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बारिया

से पाँव जल तर गया, जिने तो है ध्याया, जिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, जो सेवे सत मुरार से पाँव जल तर गया, जो बोले हर हर

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदे विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

पातशाह आप कृपा कीती है और असि अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ले जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

सुने तुम मैंने साथे नाते सच कमाया बाकी मैंने ये सच पाया जिनके हृदय का सुताया मूर्छा था जाने।

चित करे, ताने चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां बारह वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन गौड़ी राग सुलखणी देखा समय चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिक्का होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

चलो ठीक है, मेरे नाल तां तुहाडी शुरू तो बनी ही ने, भगवान नूं उलांबे दे रहे, मैं ते तुहानूं माड़ा ही लगना, पर ए भीष्म पितामा ए कर्ण वर्गे इतने योधे ते द्रोणाचार्य ए तां माड़े नहीं ना सन। असी रात तुहाडे लई इतना इंतजार किया, सारी सभा बैठी रही, तुहानूं इतना ना मन विच ख्याल आया भाई इतने वड्डे बंदे मेरे इंतजार च बैठे ने ते तुसी जाके नौकरां दे घर। सोचण वालियां गल्लां ने गुरु की साथ संगत। कई बार असी हंकार नाल बहुत कुछ सोच लैने, बहुत हंकार आ जांदा, साडे वर्गा कोई नहीं, लेकिन भाई साहब उन्हां मनुखां दा हंकार तोड़ रहे हैं। ए वार सुना के

राजा बोली थे, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं